0: Leica Radio.
1: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at Three Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton Three Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
2: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी।
3: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
2: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया।
3: दिल तो टूट भी गया,
2: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
4: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
2: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT394।
5: ब्रांड्स दैट यूज रेडियो आर 49% मोर लाइकली टू गेट नोटिस्ड। Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
0: Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. Catch the legend, Ravi Sharma, every weekday morning at 9 a.m.

0: Breaker Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
2: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग।
0: कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
3: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
4: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
0: Like a radio network. Broadcasting across the UK with Asian stations. Sounding good throughout the night. With the biggest soothers. It's your Leica Radio.

जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए के जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवे ता बात ना पूछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे सुनिए।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहावी।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए।

साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती छित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान, कच पकाई

लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो डॉट कॉम ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी बॉलीवुड्स बिगेस्ट 90 सॉन्ग्स नॉन स्टॉप

0: Asha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill. A desi tadka is total risk, hai na?
2: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
1: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods Potato Chips now.
3: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
4: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
5: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.

0: बुधवार वर्ष 2026 के जुलाई महीने की 22 तारीख और वक्त हमारी आपकी मुलाकात का भाई ब्रिटिश घड़ियों में 10:05 हुआ चाहते हैं और हम खोलते हैं अपनी डायरी याद दिलाते हुए कि भाई काजल पिछले 4 से आपके साथ थी और कल फिर होंगी। अब अपनी बारी है। माय नेम इज रवि शर्मा एंड आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। और कहना चाहता हूँ बहनों भाइयों के बज्म तारों ने सजाई थी मगर बज्म तारों ने सजाई थी मगर चांद बिन आसमान सूना था। तेरे आने से हुआ है एहसास कि तुझसे पहले जहान सूना था। रौनकें थी प्रभु की दुनिया में दिल मगर मेहरबान सूना था। तेरी सोचों का हर गली कूचा मान भी लो मेरी जान सूना था।
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Are you listening? Leica Radio is now available across Coventry on DAB.
0: और भाई भाइयों फिर से दोहरा दें कि बज्म तारों ने सजाई थी मगर चांद बिन आसमान सूना था। तेरे आने से हुआ है एहसास तुमसे पहले जहान सूना था। रौनकें थी इस खुदा की दुनिया में दिल मगर मेहरबान सूना था। और तेरी सोचों का हर गली कूचा मान ले मेरी जान सूना था। तेरे बिन ये जहान सूना था।

छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी भाई मौसम फिल्म का गीत। आज के कार्यक्रम के शुरू में जो बैक टू बैक संगीत हमने चुना वो आपने सुना भाई। पहला गीत था तुम आए तो आया मुझे याद, जख्म फिल्म से लिया गया था यह गीत, अलका याग्निक ने गाया था। और अभी जो गीत आप सुन रहे थे दैट वाज संग बाई लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफी। तो साहब

0: और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच. टीस एंड सीज अप्लाई. गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव. लाइका रेडियो.
2: लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्ले बैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
3: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: लेना चाहती है भाई, कभी कभी होता है ऐसा। तो मैंने कहा हाँ हाँ लीजिए लीजिए। कहती नहीं नहीं मैं नहीं लूंगी, आप मेरी फोटो लीजिए, मैं यहाँ खड़ी हूँ ना जहाँ, ये स्पॉट बहुत अच्छा है, कर लो क्या करोगे, गलतफहमी दूर। मैंने कहा ठीक है। अब भाई मैं उनकी फोटो ले रहा था तो मैडम ने शेर बोल दिया, क्या तस्वीर हमारी खींच रहे हो, दिल की कली को सींच रहे हो, लेकिन हमको ये बतलाओ एक आंख क्यों मीच रहे हो, बहाने से आंख मारते हो। अरे नहीं साहब, देखे वैसे आंखों का काम है लड़ना और लड़ाना, कोई तो बीच में आना चाहिए भाई, लोगों को चश्मा लगाना चाहिए।
1: कहने माशाल्लाह नजर तीर आपकी, क्या कहने माशाल्लाह।

0: खींचिए भाई तस्वीर खींचिए, बहुत अच्छी बात है। कहीं तो खींचते भी नहीं, कहते आप खींची खींचाई दे दो जी, आप अपनी फोटो दे दो, क्या करेंगे? पता क्या कहा? कंध पे फोटो लगाना चाहता हूँ, कंध यानी दीवार पे। चमनलाल चमन जी की कलम से ये शायरी बोले, दीवार पे फोटो लगाना चाहता हूँ। क्यों जी? बोले फटे वॉलपेपर को छुपाना चाहता हूँ। वॉलपेपर फट गया, उसको छुपाना चाहता हूँ वहां से। और मेरे दिल की बात अगर आप पूछते हो शर्मा जी, मेरे मन की बात अगर आप पूछते हो, तो आपसे मैं डिनर खाना चाहता हूँ।
1: दुल्हन बनी है आज तो तकदीर आपकी, दुल्हन।
0: याद आते हैं भाई चमनलाल चमन बहुत, कभी कभी उनकी जब शायरी, जब उनकी किताब, उनकी कविताएं, उनके जोक्स हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं तो दुनिया में नहीं है लेकिन हमारे दिल में है। क्या कहने माशाल्लाह। धीरे धीरे हम खबरों की ओर बढ़ रहे हैं और भाई पॉलिटिक्स लेटेस्ट में जो है, यहाँ यूके में तो बर्नम ब्रिंगिंग बैक 2 pounds बस फेयर कैप। अच्छी बात है, कुछ तो भाई नए फैसले उनके स्वागत योग्य होंगे। धीरे धीरे उनके मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, धीरे धीरे लोगों की जुबान पर नाम चढ़ रहा है एंडी बर्नहम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खबरें हैं, पहले तो बता दें ये गीत आप तक किसने पहुंचा और उसके बाद खबरें लेकर आते
2: हैं। गुलाब जामुन, रस मलाई, मोती चूर लड्डू एंड मच मोर। विजिट happyhalwai.com।
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: लाइक अ रेडियो नेटवर्क। अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप मालिकों की इनडेफिनेट हड़ताल, कारण क्या है? ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन ने सरकार के साथ हुई बातचीत बेनतीजा रहने के बाद मुल्क भर में इनडेफिनेट हड़ताल का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि 22 और 23 जुलाई को 2026 की मध्य रात्रि यानी आज रात 12 बजे से पाकिस्तान के सभी पेट्रोल पंप अगले आदेश तक बंद रहेंगे। एसोसिएशन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पेट्रोल पंप मालिकों के मार्जिन में बढ़ोतरी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें रोजाना तय करने के प्रस्ताव को लेकर पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक के साथ हुई बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है और अब पेट्रोल मालिकों पंप मालिकों का कहना है कि इस मुद्दे पर पिछले कई हफ्तों से सरकार के साथ बातचीत चल रही थी और विरोध की तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। संगठन ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार उनकी मांगों पर पॉजिटिव फैसला नहीं लेती है। ईरान के प्रेसिडेंट पेजिशकियान ने अपने ही मुल्क के सरकारी न्यूज चैनल की कड़ी आलोचना की है, क्रिटिसाइज किया है। मसूद पेजिशकियान ने कहा कि सरकारी चैनल ने सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के बयान का एक तय हिस्सा चलाया जबकि पूरा बयान नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत के लिए खामनेई ने मंजूरी दी थी लेकिन टीवी चैनल ने खामनेई के सिर्फ उन बयानों पर ध्यान दिया जिनमें बातचीत से इनकार किया गया था। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP और स्टूडेंट्स का प्रदर्शन जारी है। आज सुबह हुई बारिश में प्रोटेस्टर्स यानी प्रदर्शनकारी वहां डटे रहे और तिरपाल का इस्तेमाल करके पानी से बचते रहे, बारिश से बचते रहे। इससे पहले कल देर शाम को शिवसेना UBT नेता उद्धव ठाकरे और TMC नेता महुआ मोइत्रा समेत कई लीडर्स वहां पहुंचे। जंतर मंतर पर चल रहे स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को लेकर एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि कहीं देश के अंदर और बाहर के कुछ गलत लोग छात्रों के गुस्से और परेशानियों का फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं लगता है, क्योंकि स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है पर राजनेता मोदी के खिलाफ अपना गुस्सा प्रदर्शित करने के लिए उनके साथ जुड़ रहे हैं। प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को जो देश विरोधी तत्व हैं उनकी ओर से हंगामा फैलाने या उसकी दिशा बदलने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जेनेरिक दवाओं के इंपोर्ट को लेकर के एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त से इन दवाइयों पर 0% टैरिफ लगेगा, लेकिन एक साल बाद इसे बढ़ाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह सोशल पर पोस्ट किया कि 1 अगस्त 2026 से अमेरिका में लाई जाने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल की अवधि तक टैरिफ 0% रहेगा, 0%। इसके बाद 1 साल की अवधि के लिए टैरिफ बढ़ाकर 100% कर दिया जाएगा और उसके बाद ये 200% हो जाएगा। भारत से आने वाली खबरों में तमिलनाडु के सीएम विजय की पार्टी ने राहुल गांधी को हिरासत में लेने पर एक बयान दिया है। तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय की पार्टी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हिरासत में लेना और हथकड़ी लगाकर ले जाना ये लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है। राहुल गांधी भाई स्टूडेंट्स के साथ प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए जंतर मंतर बना पहुंचकर प्रधानमंत्री के घर के आगे जाकर बैठ गए। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC ने आज दोपहर 11:30 वहां भारत के समय के अनुसार 16 मेट्रो स्टेशन बंद कराने की जानकारी दी है। DMRC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 16 मेट्रो स्टेशन का नाम जारी करते हुए लिखा कि ये मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। केदारनाथ धाम जाने वाले पैदल रास्ते पर भारी बारिश के बाद मलबा और बोल्डर गिरने से ये यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है, टेम्परेरी तौर पर। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें विभिन्न सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ जारी संकट को खत्म करने के लिए बातचीत और समझौते के लिए तैयार है, लेकिन ईरान इस मामले में गंभीर नहीं दिखाई पड़ रहा है। साउथ ईस्ट एशियाई कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक में रूबियो ने अमेरिका ईरान टेंशन को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब भी ईरान के साथ ये संकट खत्म करने के लिए बातचीत को तैयार है, लेकिन ईरान बातचीत को लेकर के सीरियस नहीं है। पटना में भी स्टूडेंट्स का प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस ने किया वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल। वहां दिल्ली में चल रहे स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट की हिमायत में बिहार की राजधानी पटना में आज बुधवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के आह्वान पर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और इस प्रदर्शन में आईसा के छात्रों के अलावा अन्य कई जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे भी छात्र जुड़े। और आपको बता दें भाई, कांग्रेस जनता पार्टी ने सोनम वांगचुक को एक पत्र लिख करके एक मांग की है। CJP ने आज सोनम वांगचुक जो कई दिनों से हड़ताल पर थे, बाद में उन्हें वहां से उठा करके अस्पताल ले जाया गया। पूरे सम्मान और दिल से आभार के साथ पार्टी ने कहा कि हम आपसे निवेदन करते हैं कि प्लीज अपना अनशन खत्म कर दीजिए। आपके त्याग ने पूरे देश के हजारों स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया है। 20 जुलाई को अलग अलग राज्यों से सिर्फ युवा जो है वो आपके इस आंदोलन की हिमायत में दिल्ली पहुंचे हैं।

0: ईरान के प्रेसिडेंट पेजिशियान ने अपने देश के सरकारी न्यूज चैनल की भाई आलोचना की, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। साथ में एक बार फिर बता दें कि पाकिस्तान में पेट्रोल पंप मालिकों की इनडेफिनेट हड़ताल चल रही है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी भारत के यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी छात्रों का पॉलिटिकल इस्तेमाल करके संसद के मॉनसून सेशन में रुकावट डालना चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार देर रात एक्स पर कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना दिया, जिससे आम लोगों को परेशानी हुई। आपको बता दें भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स धर्मेंद्र प्रधान के ही इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: ये है लाइका रेडियो, टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: लीजिए साहब, हम बताते हैं आपको करेंसी रेट्स LemFi की. एक पाउंड के बदले एट दिस टाइम दे आर गिविंग 129.09 इंडियन रुपीस. पाकिस्तानी रुपए वो दे रहे हैं 371.84. एक पाउंड के बदले श्रीलंकन रुपए 449.97, बांग्लादेशी टके 165.05, अफगान अफगानी 89.1.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: Leica Radio.
0: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: भाई, पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमतें जो ढलान पर थी, लेकिन आज फिर उछाला देखा जा रहा है. द गोल्ड इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 99.1 पाउंड्स पर.
0: रॉम ज्वेलर्स स्पेशलाइजिंग इन डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, 22 कैरेट गोल्ड, वाइट गोल्ड ज्वेलरी, कॉइन्स एंड गोल्ड बुलियन बार्स. विजिट रॉम ज्वेलर्स ऑन 116 बेलग्रेव रोड, लेस्टर, और कॉल 0116-266-4278.
4: Stock up and save at Falcon Cash and Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 7.49. Leela Medium Atta 10 kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 3.99. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash and Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE12JU, and 2A Rollout Sale, Leicester, LE54UN. Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
7: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
6: So where do we find something like that now?
7: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our eldest used.
8: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Sidhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट रागासन.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.

मुकेश चंद्र माथुर 1923 में दिल्ली में जन्मे थे भाई, और इनकी आवाज ने ऐसा मुकाम पाया दर्द की पहचान बन गए। राज कपूर तो कहते थे मेरी आवाज है मुकेश जी। ये गीत हमें ले आया है खबरों के नजदीक

0: खबरों का वक्त हो गया. न्यूज इज नेक्स्ट ऑन लाइका रेडियो.
1: Across the Midlands, this is Leica Radio on DAB and online.
2: A part of the Leica Radio Network.
3: The top stories this hour. Andy Burnham's bringing back a £2 bus fare cap for most journeys in England from January, promising to lead a cost-of-living government. The Transport Secretary says much of the near £500 million cost will come from reallocating international climate grants to loans. Yesterday, some argued a VAT cut on household electricity bills in Britain would be paid for by cutting an unfunded scheme. Shadow Chancellor Sir Mel Strides among critics.
4: We are seeing all these things come out without a clear plan behind them. That's why we're now having discussions about whether they're funded or not. And the conclusion of all this will be increased taxes.
3: Prices are rising more slowly when it comes to services and what we pay in the shops. Inflation fell to 2.6% in June. The Office for National Statistics says it had been 0.2 percentage points higher the previous month. Our business correspondent Paul Kelso has been digging into the reasons behind the drop.
5: Two biggest drivers of that. Number one has been fuel prices. Another factor dragging down inflation from the British Retail Consortium, not the Office of National Statistics, but again shows food prices were indeed on the decline May into June.
3: But rising energy prices are expected to push inflation higher over the rest of the year. Two of PC Andrew Harper's killers may be eligible for early release under plans to ease prison overcrowding. His mum says it's a slap in the face. The officer was dragged behind a car in Berkshire in 2019. More than 1,000 staff of the Metropolitan Police have been removed from their posts. Inspectors say vetting still needs to improve. Santander has promised not to shut any more branches in the UK before 2028. The bank announced 44 would close at the start of the year, putting almost 300 jobs at risk. And fans and tourists on a Beatles bus tour in Liverpool were left stunned when Paul McCartney pulled up next to them in his car. The musician had Ringo Starr on FaceTime and held his phone out of the window so his bandmate could say hello. The bus driver told reporters he initially thought it was a joke. From Sky News, I'm Faye Rowlands.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
0: वेरी गुड मॉर्निंग. मौसम की भविष्यवाणी, भाई आज भी मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा. तापमान भी जो है वो अच्छा खासा है. लंदन में 26 डिग्री और मिडलैंड में 24 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा. हल्की हवाएं चलेंगी और साहब देर इज ए स्मॉल चांस इन फ्यू एरियाज फॉर द आइसोलेटेड शॉवर्स. तो कहीं कहीं छुटपुट बूंदाबांदी हो सकती है, पर ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा. आज रात को भी आसमान साफ रहने की संभावनाएं ज्यादा हैं, तो इस तरह का मौसम होगा आज.
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. This is Leica Radio across the Midlands.
6: Manoranjan with Ravi Sharma.
7: Leica Radio. चिंतन चिंतन.
0: स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में, जब हम आपके लिए चिंतन लाते हैं. भाई चिंतन की लोकप्रियता का एहसास मुझे चलते फिरते आते जाते कई जगह से मिल जाता है. अभी देखिए सुबह सुबह ट्रेन में मैं जोगिया जी हमारे एक मित्र हैं उनसे बात कर रहा था, तो सामने बैठी दो महिलाएं देखने लगी घूर के, फिर कहने लगी आपकी आवाज से लगता है कि आप रवि शर्मा हैं. मैंने कहा हाँ मैं हूँ, बताइए. कहने लगी कि रवि जी हम आपका चिंतन बड़े चाव से सुनते हैं. तो भाई उन महिलाओं को भी समर्पित करते हैं और सभी चिंतन प्रेमियों को आज का विशेष चिंतन हम समर्पित करना चाहते हैं इस भावना के साथ कि आपने रथ यात्रा तो देखी है ना यहाँ लंदन में. भाई ओरिजिनल रथ यात्रा जो पुरी में उड़ीसा में होती है, अब उड़ीसा से आए एक संत महानुभाव से हम आपका आपकी आपका परिचय करवाएं या आपकी बातचीत सुनवाएं, उनकी बातचीत सुनवाएं आपसे, तो भाई तैयार रहिएगा। हम बड़े श्रद्धा से, बड़े आदर से परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय स्वामी शिवाचिदानंद सरस्वती से संपर्क करने जा रहे हैं। आप 89 बरस की आयु में भुवनेश्वर उड़ीसा से पधारे हैं और शिवानंद सरस्वती जी के डायरेक्ट आप अनुयायी हैं, तो स्वागत है आपका स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। नमस्कार। नमस्कार।
8: प्रणाम। प्रणाम
0: जी। आपका पहले तो ब्रिटेन में स्वागत है, फिर आपका लाइका रेडियो नेटवर्क पर स्वागत है, हमारे स्टूडियो में आपकी आवाज का स्वागत है। बताइए।
8: धन्यवाद जी।
0: जी आपका जो सात्विक संदेश सुनने के लिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी बताइए अपनी संस्था के विषय में बताइए।
8: जी ग्रीटिंग्स एंड सैल्यूटेशंस फ्रॉम कॉस्मिक फ्रेंड।
0: जी धन्यवाद।
8: बाय द इनविटेशन ऑफ जगन्नाथ सोसाइटी दिस सेवक इज हियर and is conveying his message, what he has experienced in life, peace capsules. Share what you have with others. Even this will pass away. Serve, love, meditate, realize. Adapt, adjust, accommodate.
0: क्या बात है?
8: Detach. Attach. Thou art that. These are the messages of Swami Shivananda, founder of the Divine Life Society, 20th century saint. He says, feel for others, live for others, take less, give more. Remember your Lord's sweet name constantly. By practicing this, we will get peace. Individual peace leads to world peace.
0: Ji.
8: If we practice these noble virtues, serenity, regularity, absence of vanity, sincerity, simplicity, veracity, equanimity, fixity, non-irritability, adaptability, humility, tenacity, integrity, nobility, magnanimity, charity, generosity, purity, practice daily these 18 ities, you'll soon attain immortality. Brahman is the only real entity. Mr. So-and-so is a false non-entity.
0: Swami ji.
8: You will abide in eternity and infinity. You will behold unity in diversity. You cannot attend this in the university.
0: Swami ji. आपकी बात अंग्रेजी में हमारे श्रोताओं तक पहुंच रही है, लेकिन हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो है वो हिंदी, पंजाबी, गुजराती यानी भारतीय भाषाओं को भी अच्छी तरह समझते हैं। हाँ, और क्योंकि समय की मर्यादा है तो आप संक्षिप्त शब्दों में जो आपका
8: जी। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है।
0: इस देह को मैं मानना कि मैं शरीर हूँ बहुत बड़ा पाप है।
8: सबसे बड़ा पाप है। सब पापों इसी का पुत्र है, सब पापों का एक बाप है। हम जो इस शरीर के साथ तादात्म्य करते हैं, शरीर मन के साथ, यही है जितनी समस्याएं हैं सबका मूल कारण है ये मन। ये मन दुश्मन है। मन को एंगेज करने के लिए नाम, भगवान का अपना अपना इष्ट देव का प्यारा नाम जो है, मन के साथ नाम को जोड़ लीजिए तो आप रोबोट बन जाएंगे, यंत्र मानव बन जाएंगे। आज पर द कमांड, भगवान की जो भगवान की आज्ञा से आप परिचालित होंगे। वर्क इज वर्शिप डेडिकेटेड टू गॉड। कर्म ही पूजा है। अब सौंप दीजिए सब कर्म को, कर्म का फल भगवान को समर्पण कर देने से आप और बंधन में नहीं गिरेंगे।
0: क्या बात है स्वामी जी यहाँ रेडियो पर समय की मर्यादा के कारण हम आपको एक सीमित समय तक ही ले सकते थे स्टूडियो में, लेकिन ऐसा कोई कार्यक्रम आपका हो रहा हो जहाँ लोग आ सके और सुन सके। दूसरा, आपकी ये जगन्नाथ सोसाइटी के विषय में और संगीत के माध्यम से और उपदेश, ये कहीं पर आपका आयोजित हो रहा हो तो बता दीजिए, हम लोगों को वहाँ जाने के लिए आग्रह कर सकते हैं।
8: सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ भगवान ही जगन्नाथ है
0: जी,
8: और भगवान का हृदय बहुत कठिन है और फूल से भी कोमल है। जब द्रौपदी माता जी ने अपना कपड़ा पकड़ के हे द्वारकाधीश मुझे बचाओ बचाओ बचाओ बोलती थी, वो सुने नहीं। वज्राग विकठोरानी मृदुनी कुसुमानी छो, भगवान का हृदय जब दोनों हाथ छोड़ ली, कंप्लीट सरेंडर, संपूर्ण शरणागति जब कर ली, अब हे हृदय बिहारी तेरे सिवा कौन मेरा, कृष्ण कन्हैया मेरी नैया को पार लगा दे कन्हैया, तब तो गजेंद्र गजराज जो है वो तो पशु थे, वो भी भगवान को पाए थे अपने प्रार्थना के द्वारा। ध्रुव और प्रहलाद बालक थे, कुब्जा एक असुंदरी नारी थी, धर्म व्याध वो तो मांस बेचने वाले थे, ये सब भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि भक्तिया तुष्यति केवलं न तो गुणैः ही भक्ति प्रियो माधव, भगवान जगन्नाथ भक्ति प्रिय है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच,
0: मोक्षयिष्यामि मा शुच। भाई सभी धर्मों का परित्याग करके, सारे अब धर्म से मतलब वो नहीं है कि पूजा पाठ है, धर्म मतलब जितने भी दूसरे कार्य हैं उन्हें अपने ऊपर ना लेकर के, स्वामी जी कहते हैं कि अपना जो कर्तापन है, जो अहंकार है कि मैं कर रहा हूं, इसका त्याग करके मेरी शरण में आ जा तो तेरे सभी पापों को समाप्त करके मैं मोक्ष प्रदान करूंगा। ये स्वामी जी सरल शब्दों में कहना चाहते हैं श्लोक के माध्यम से, गीता का श्लोक था। इससे पहले भी स्वामी जी ने भाई बताया है कि मैं अहंकार यानी शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है। अब जब आप कहते हैं कि मेरा हाथ, तो जिसे आप मेरा कहेंगे वो आप नहीं हो सकते। मेरा घर, मेरी कलम, मेरी गाड़ी, अब गाड़ी आपकी है लेकिन आप खुद गाड़ी नहीं है, मेरा शरीर, आप खुद शरीर नहीं है। स्वामी जी सरल शब्दों में भाई और भी व्याख्या कर सकते हैं लेकिन हमारे पास समय की मर्यादा है। अब हम महाराज जी को धन्यवाद कहना चाहते हैं और भाई उस संस्था को भी, विशेषकर हमारे जो सुकांत भाई हैं जिनके सौजन्य से, और हमारी जो अलका शाह हैं उनके माध्यम से आपसे संपर्क हुआ। स्वामी जी आपके दर्शनों की इच्छा बनी रहेगी। हम चाहते थे कि अगर, हाँ जी, अगर कहीं पर आपका कोई सत्संग है तो उसका एड्रेस बता दीजिए, दिन बता दीजिए, तो बहुत सारे लोग सुनना चाहेंगे आपको।
9: स्लाव हिंदू मंदिर
8: बोलिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
10: इवनिंग में स्लाव मंदिर में रवि भैया हैं, स्लाव हिंदू मंदिर में।
0: ओके।
10: शाम को 6:30 से 7:30 तक स्वामी जी होंगे वहाँ।
0: ओके। आज
10: आज
0: ही है, आज है। थैंक यू वेरी मच। स्लाव मंदिर में शाम 6:30 से, तो भाई स्लाव मंदिर ये कील ड्राइव में है आपको बता दें, और वहाँ स्वामी जी का दर्शन और प्रवचन, और मुझे पूरा विश्वास है वहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था होती है, आरती और प्रसाद सब वहाँ पर उपलब्ध होता है। थैंक यू सुकांत भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी जगन्नाथ सोसाइटी के लिए। भाई जगन्नाथ भगवान का ही नाम है, सारे जगत के नाथ, और उड़ीसा में जो रथ यात्रा होती है वो भगवान जगन्नाथ की, बलभद्र जी की और सुभद्रा जी की, भाई वो यात्रा उसी को लेकर के रथ यात्रा निकलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुकांत जी, और महाराज जी के चरण स्पर्श मेरी ओर से और हमारे लाइका रेडियो परिवार की ओर से।
10: थैंक यू लवी भाई, धन्यवाद टू यू, लाइका रेडियो और अलका दीदी, नमस्कार। जय जगन्नाथ।

0: चंद्रभागा।
1: भर भाइयों, चिंतन आपको सोचने की प्रेरणा देता है, विचार करने की। विचार का नाम ही चिंतन है। हमने वाणी में पढ़ा है, किसी ने बताया हमें कि उसमें लिखा है कि ना सुख है विच ग्रस्त देत ना कुछ छड गया, ना सुख है विच ग्रस्त देत ना कुछ छड गया, सुख है विच विचार दे संता शरण गया। संतों की शरण में जाने से, उनका व्याख्यान सुनने से, प्रवचन सुनने से और उसको धारण करने से कल्याण होता है, सुख मिलता है। आज का चिंतन, आज का विचार भाई हम कर देते हैं सुकांत जी के की ओर से, और अलका और हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जिनका प्रवचन आपने सुना। 89 बरस की आयु में भुवनेश्वर उड़ीसा से ये पधारे हैं शिवानंद जी सरस्वती जी के अनुयायी हैं, और आप हैं शिवा चिदानंद सरस्वती जी महाराज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: State Bank of India UK. याद दिला रहे हैं भाई, पैसे भिजवाइए अपनों को, और आज का रेट अच्छा है, सुन लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके टुडे फॉर £1 गिविंग इन इंडियन करेंसी 128.8 रुपीस। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीस एंड सीज अप्लाई। Like a radio.
3: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, $7.49. Leela Medium Atta 10 kg, just $3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, $24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, $10.99. And Falcon Paneer Box, $8.99. Get

0: This is Leica Radio across the Midlands.
1: और लाइका गोल्ड की ओर से भाई एक संदेश आपके लिए कि लाइका रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर फॉर दिवाली स्टोरी। बड़ी चर्चा है इसकी भाई, ये दिवाली की कथा नहीं, यूं समझिए कि राम कथा है, हमारे गौरवमय इतिहास की कथा है। द म्यूजिकल दैट सोल्ड आउट द रॉयल अल्बर्ट हॉल एंड नाउ अराइविंग एट ओवर वेम्बली अरीना ऑन संडे 27 सितंबर। अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा ये तारीख भाई, पहुंचना है वहां। स्टूडेंट प्री शो टेक्स प्लेस फ्रॉम 5 PM टू 5:45 PM, ये स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद मेन इवेंट जो है वो शाम 6:15 से 9:30 तक चलेगा। तो क्रिएटेड बाय सनातन इवेंट्स फाउंडेशन, फाउंडर नितिन पालन MBE, इनके अलावा फीचरिंग कोरियोग्राफी फ्रॉम द बॉलीवुड डांस स्कूल टीम। द इंग्लिश लैंग्वेज प्रोडक्शन ब्रिंग्स द रामायणा टू लाइफ विद 4 chapters, 4 अंकों में ये प्रदर्शन होगा भाई। बिस्पोक 7 songs साउंड ट्रैक एंड ए फुल इंटरनेशनल कास्ट इसमें परफॉर्म करेगी। टिकट्स के लिए नोट कीजिए www.diwalistory.com, ये है पता।
0: दिस इज द Leica रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
1: आइए अब एक सुखी पति, सुखी हस्बैंड कौन होता है? वो जो पत्नी की हर बात को सर आंखों में लेता है। जो तुम कहोगी वही कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे। यार नावी तले नहीं लगना चाहिए। अरे जो तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे, ठीक है।

0: स्वर्गीय मुकेश स्वयं माँ सरस्वती निवास करती थी भाई इनके कंठ में। आज उनकी जयंती है। आज ही के दिन जन्मे थे मुकेश चंद्र माथुर 1923 में दिल्ली में उनका जन्म हुआ था।
1: Brought to you by Dairy Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Leica Radio.
0: Leica Extra Podcast Update. लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट भाई हमारा नया एपिसोड आ चुका है और हम आपको बता चुके हैं कि लाइका प्रेजेंटर्स टेक ओवर, ये है टाइटल हमारे एपिसोड नंबर 25 का। और लाइका एक्स्ट्रा पर आप देख सकते हैं झांक सकते हैं, ताक सकते हैं हमारी जिंदगी को। स्टूडियो से हमारी आवाज आप सुनते हैं, पहचानते हैं, लेकिन इस आवाज के पीछे जो व्यक्तित्व और भाई जो संघर्ष और जो बातें बहुत सारी जुड़ी हैं उनकी जानकारी इस एपिसोड में मिल सकती है। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
3: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Leica Radio.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: Leicester Mela is back.
7: And the stage is about to explode.

इस गीत को सुनकर आपको एक अभिनेता याद आएगा, दुबला पतला सा आम आदमी सा था पर अभिनय का एक्सपर्ट, मजहर खान। आज दुनिया में होते थे तो भाई वो भी अपना जन्मदिन मना रहे होते, मजहर खान।

0: क्या? हाँ, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। आते जाते हूँ,
1: आते जाते हुए सबकी खबर रखते हैं। नाम अब्दुल है नहीं साहब, नाम है मजहर खान।
0: रखता हूँ नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर।
1: आज के दिन पैदा हुए थे।
0: नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता।
1: इनकी फिल्मी जिंदगी बहुत लंबी नहीं रही, इनकी वैसे भी जिंदगी लंबी नहीं थी। 1955 में जन्मे थे। मुकेश जी की तरह उनका भी आज जन्मदिन है, लेकिन आज जन्मदिन मनाने वालों में कुछ और नाम भी शामिल हैं। अरमान मलिक 1995 में जन्मे थे। और भाई अगर पॉलिटिशियंस की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस आज ही के दिन 1970 में जन्मे थे, ये नागपुर में जन्मे थे। रीता बहुगुणा जोशी 1949 में जन्मी थी भाई, ये भी पॉलिटिशियन है। और भाई फिल्मी दुनिया में मान्यता दत्त, संजय दत्त की पत्नी, 1979 में आज ही जन्मी थी। पॉलिटिशियंस में अजीत पवार, स्वर्गीय अजीत पवार 1959 में जन्मे थे। कितने पॉलिटिशियंस जो है आज के दिन दुनिया में आए थे। आपके घर परिवार में अगर किसी का जन्मदिन आज है तो भाई हमारी ओर से, हमारे दिल की गहराई से, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
2: वन एंड ओनली वन रवि शर्मा ऑन योर नंबर वन रेडियो।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: और LemFi के रेट्स बताएं हम आपको। एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 129.07 रुपीस, पाकिस्तानी 371.73, श्रीलंकन रुपए 449.8, बांग्लादेशी टकी 165.01 एंड अफगानी 89.41.
3: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Manoranjan with Ravi Sharma.
5: Leica Radio.
3: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: The gold is trading at the rate of 99.13 pounds per
3: gram. Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
5: Leica Radio.
6: लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। संडे 27th of September, डी मॉन्टफोर्ट हॉल, लेस्टर। डोर्स ओपन 6:30 PM, शो स्टार्ट 7 PM। टिकट्स बुक करें dmontforthall.co.uk
7: या मुंबई सैंडविच स्टेशन ऑन 0116-332-0262 और कॉल मिस्टर बी ऑन 0786028-0655। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
8: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।

0: आसमा कहती है कि ये गीत मेरे नाम कर दे, इसमें मेरा नाम आता है और ये गीत बना मेरे लिए है। आसमा जी वो ऊपर वाले आसमान की बात कर रहे हैं शायद, पर आप अपने नाम कर लीजिए, कौन रोक सकता है। और हितेश भाई आपने जो लतीफा लिख के भेजा ना, यकीन मानिए आप तो इंडिया में हैं, वहां से आपने लतीफा भेजा है, लेकिन यहाँ हमारा घर में लतीफा बन जाएगा अगर हमने इसे बार बार पढ़ा तो। एक एक या दो बार मैं पहले ब्रॉडकास्ट कर चुका हूँ आपका ये लतीफा पति पत्नी के बीच का, पर भाई इसे अब और ज्यादा मत पढ़वाइए, पति पत्नियों को मत लड़वाइए। शोभना राय जी, हंसा बोरा जी, और हाँ आज जन्मदिन मनाने वालों में एक और नाम जुड़ गया है, दीमल। भानुबेन कहती हैं कि मेरे बेटे का जन्मदिन भी आज ही है, तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और साहब अगला गीत
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा,
0: अगला गीत हमें लेकर के चलेगा 12 बजे की खबरों तक। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, लेकिन हमने देखा भाई प्यार करते हैं पर डरते हैं। भाई अपने घर में प्यार करो, पड़ोसन पर नजर रखते हैं तो डरना पड़ेगा।

गाना खत्म हो गया, अब किस चीज का इंतजार है? क्या प्रसाद मिलेगा? मिलेगा मिलेगा भाई, संगीत अपने आप में उस प्रभु का प्रसाद है भाई। ये दो गीत हमने आपको सुनवाए जो बैक टू बैक संगीत के तहत। पहला गाना था रूठे रब को मनाना आसान है पर रूठे यार को मनाना मुश्किल है। देखा हमने, देखा भाई बहुत मुश्किल होता है, कितनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। और भाई दूसरा गीत था दरिया में जहाज चले, ये किशोर कुमार, आशा

0: रितेश, वो गुजरात वाले, और आप कौन हैं? अर्जन जी, थैंक यू. ऑलवेज माय फेवरेट रेडियो इज लाइका गोल्ड. कितने अच्छे और सच्चे इंसान हैं आप, सच बोलते हैं बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच. और आप कौन हैं? आपका नाम ढूंढ रहा हूं मैं, कहाँ है? राजेश. राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया. हंसा बोरा, शोभना राय, और भारत से आप चिंतन की प्रशंसा में लिख रहे हैं. केतकी, यू आर स्टिल इन इंडिया. ओके ओके, हमारी ओर से भी भारत भूमि को प्रणाम कहिएगा. वत्सला जी, आपका सात्विक संदेश हमेशा मिलता है, प्राप्त होता है, थैंक यू. और रानी ऑफ स्लव, जगदीश जी बुशी में, प्रकाश नॉर्थोल्ट में, हरविंदर जी, रंजन, जैस्मीन, ये वो लोग हैं भाई जो अपने जुड़े रहने का एहसास कराते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं, थैंक यू. सहर राजेंद्र राज, पम्मी सिंह स्लो वाले, अनिल सोनी वियाना वाले, और मानसी सरस्वती पंडित जी, थैंक यू वेरी मच. कहते हैं मजा आ गया गली में आज चांद निकला सुन करके. कब निकला था? निकला था, मुझे पता लगा कब आया और निकल गया. गीत भाई, मेरा ख्याल है प्रोग्राम का पहला ही गीत था शायद. हिटल सोलंकी, हिना जहीर खान, कराची वाले भाई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ते हैं. और आपको पहले तो पाउंड का रेट बताते हैं.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK reminding that today our rate is for £1 in Indian currency we are giving 128.8 rupees. 128 rupees aur 80 paise ka rate chal raha hai. You can transfer via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio.
2: Leicester, tayar ho jao ek yaadgar Bollywood night ke liye. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor. Playback singer Aman Trika. Or female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
3: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116-266-6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-396-6357-57. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: Start

कौन है ये कन्याकुमारी? कौन ये तपस्वी की तपस्या भंग करने की कोशिश कर रही है? हम बड़े परिपक्व इरादे वाले सन्यासी हैं। बाय द वे, अभी बात कर नहीं सकते, रेडियो पे हैं, शाम को मिलना।

0: हेमा मालिनी इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक. उनकी फिल्मों के कई गीत आप सुनेंगे. दिस सॉन्ग वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म सन्यासी. लता जी की आवाज थी और संगीतकार शंकर जयकिशन की रचना. मुकेश जी साथ में थे. पूरे सप्ताह
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

स्वर्गीय मुकेश जी की आज जयंती है भाई, इसलिए कुछ गीत हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन ज्यादातर जानकारी और गीत लेकर बाली ब्रह्म भट्ट आ रहे हैं मेरे बाद। 1 बजे की खबरों के उपरांत वो आपके मेजबान होंगे।

0: Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: स्वर्गीय मुकेश और स्वर्गीय अभी इधर ही है रवि शर्मा की आवाज में अपने भाई दोनों गायक कलाकारों का क्या संयोग बनता है, क्या कॉम्बिनेशन है जब रवि जी आवाज मिलाते हैं मुकेश जी के साथ। पर रंग डांट क्यों रहे यार, ठीक तो कर, धमकी मिल रही है, रेडियो वाले कह रहे हैं अगली बार गाओगे तो स्टूडियो से बाहर हो जाओगे। देखो भाई कुछ भी हो जाए, गाने क्या करें भाई, जब मुकेश जी की आवाज में कोई गीत बजता है तो फिर रवि शर्मा अपने आप को रोक नहीं सकता है, बस उनकी आवाज सुनते ही मेरा गीत निकल जाता है। स्वर्गीय मुकेश जी आज उनकी जयंती है साहब, उनके बेटे से मुलाकात हुई, मुकेश जी से तो मिलना नहीं हुआ, हालांकि वो हमारे शहर में शो करने आए थे, बड़ी सादगी से गाते थे, हारमोनियम साथ में रख लेते थे बेस के लिए और पीछे म्यूजिशियंस हैं, और साहब कई स्टार नाइट्स हमारे यहाँ हुई और भाई हम या तो पर्दों से झांक के सुनते थे या कभी कभी कनात हटा के घुस जाते थे। महेंद्र कपूर नाइट, स्वर्गीय मुकेश नाइट, राज कपूर नाइट जिसमें राजेंद्र कुमार, राज कपूर और भी बहुत सारे अभिनेता आए थे, और महेंद्र कपूर नाइट वो भी हुई थी भाई। तो इन सब में संगीत के प्रति हमारा समर्पण, आप सोच सकते हैं कि टिकट लिए बिना ही बस घुस जाते थे। और अब एक संदेश है, कहाँ है भाई वो संदेश, मैं ढूंढ रहा हूँ, यहीं कहीं पे है, और वो संदेश ये है कि कहाँ है, यहाँ है ना, हाँ ये है संदेश, ये कि भाई कुछ एक संस्थाओं के साथ, कार्यक्रमों के साथ हम जुड़े हुए हैं, उनमें से ये भी है, लाइका रेडियो इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ लेस्टर मेला अगेन ऑन 15th and 16th of August एट एबे पार्क, ऑल्सो द ब्रेडफोर्ड सिटी मेला ऑन 1st and 2nd August एट सिटी पार्क एंड सेंटिनरी स्क्वेयर। तो भाई हम पार्टनर्स हैं, नेचुरली वहाँ पर नजर आएंगे, सुनाई पड़ेंगे, इसके अलावा और भी कई कार्यक्रमों के साथ हम जुड़े हुए हैं, जैसे कि लाइका रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ द लंडन इंडियन फिल्म फेस्टिवल विच इज टेकिंग प्लेस कब, ऑल्सो इन बर्मिंगम एंड मैनचेस्टर, हाँ वहां पर हो रहा है फॉर फिल्म स्क्रीनिंग एंड स्पेशल सोल्ड आउट इवेंट विद आमिर खान, विजिट लंडन इंडियन फेस्टिवल .co.uk उसके बारे में जानकारी के लिए आप वहां विजिट कर सकते हैं।
3: Like a radio. This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: और साउथ होल ट्रेवल का वो पैगाम आपके नाम कि भाई दे आर अनाउंसिंग दैट द FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई. पहले कहा था, अब भाई वो सूचना जो है अब पाबंदी हटा ली गई है, तो ट्रैवल कीजिए, दुबई जाइए. कॉल साउथ होल ट्रैवल फॉर द मोस्ट कम्पिटिटिव दुबई डील्स ऑन 0208 574 8410. At all protected.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels, or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
2: Yeah. Like our radio.

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores.
3: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
4: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
3: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
4: दिल तो टूट पे किया,
3: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
5: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
3: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394.
6: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
2: Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Midlands, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk.
7: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.
8: मस्ती करो, जबरदस्ती करो, जब तक जियो शान से जियो, कर्जा लेकर के घी पियो.

मस्तों को देखकर दुनिया हंसती है, पर मस्त क्या जाने दुनिया कहाँ बसती है। मस्त राम मुर्दों से पूछ रहे थे कि मुर्दों कुछ बतलाओगे, तो झट उठकर एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे।

0: आज तो ऐसा समय है कि 103rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मुकेश जी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेम्स, यू कैन से द ट्रेजेडी किंग, मुकेश चंद माथुर, बोर्न ऑन 22nd ऑफ जुलाई 1923 इन दिल्ली, एंड ही पास्ड अवे इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन डिट्रॉइट ऑन 27th ऑफ अगस्त 1976। अब मुकेश जी के बारे में मैं आपको कुछ कथा सुनाऊं, उसके पहले आप बोलेंगे कि हमको सब मालूम है, इसलिए मैं एक ही काम करता हूं। ऑल द कंपोजर्स, जितने म्यूजिक डायरेक्टर्स ने कंपोज किए गाने मुकेश जी के लिए, वो इस आवर में मैं पेश करता हूं। एंड देन इन द सेकेंड आवर ऑल द एक्टर्स जिनके लिए मुकेश जी ने गाया। सो इस आवर में थोड़े से चटपटे गाने मैं रखूंगा, एंड देन विल गो अ लिटिल बिट सोबर इन द सेकेंड आवर। सो जो म्यूजिक डायरेक्टर्स रह जाएंगे वो शायद थर्ड आवर में कवर कर लेंगे हम, पर पूरी कोशिश करूंगा मैं कि आपको एंटरटेन करूं फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स। टुडे इट्स गोना बी अ वेरी नॉस्टैल्जिक, यू कैन से, प्रेजेंटेशन टुडे। एंड 4 बजे सैंडी शाह विल बी कमिंग विद ड्राइव टाइम and Raj Baddan on Laika Radio Midlands. So, let's get on to the journey. Jitni baatein kam karenge, utne gaane zyada sunenge hum. Lekin second hour mein ek cheez to main zarur kahunga ke how Mukesh ji bankrupted himself in chasing a dream after the gamble of a film called, films called Malhar, Mashuka, Anurag. इनके बाद फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में कैसे आ गए, एंड ही बैंक्रप्टेड हिमसेल्फ, एंड हु सेव्ड हिम फ्रॉम इट, एंड आगे ही बिकेम अ ग्रेट सिंगर, हाउ। इट्स अ हैप्पी एंडिंग, सो विल गो थ्रू दी जो कठिनाइयों से वो गुजरे, उसके बाद कैसे हैप्पी एंडिंग हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 128.8 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons.
3: Gold Afternoons.
2: Proudly sponsored by Gemin Foods. The authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
0: Ji haan, the good news is there are new products come up in the range of food products of Jaimin. And thank you, Jaimin, for sponsoring this particular show. And not only that, abhi maine do gaane aapko sunaye, wo the Shankar Jai Kishan ka sangeet aur Kalyan Ji Anand Ji ka sangeet. Awara film ka Shankar Jai Kishan. Shankar Jai Kishan ke liye takriban 133 gaane inhone gaaye the. Aur 99 आई थिंक 99 सॉन्ग्स फॉर कल्याण जी आनंद जी। ये फिल्म छलिया का गाना था। आगे जाते हुए हम शुरुआत करेंगे नौशाद जी से, और नौशाद जी के बाद हम जाएंगे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, यू कैन से, एंड देन उसके बाद सलील चौधरी, फिर उसके बाद रोशन जी, फिर उसके बाद एस डी बर्मन, एंड देन बेटा आर डी बर्मन, and then we'll go into Chitragupt maybe, and we've also got a couple of names which are quite you can say less known. Hansraj Behel, Chitragupt, aise aise Madan Mohan ji ke ne bhi compose kiye the gaane. So a number game se baat karte hain to 133 songs for Shankar Jai Kishan, Kalyan Ji Anand Ji 99 songs, एंड देन वी हैव 12 सॉन्ग्स फॉर एस डी बर्मन. दूसरे थे 8 गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए, 80 गाने गाए थे इन्होंने. तकरीबन 8 गाने किसके लिए थे मैं जरा देखता हूँ और आपको बताऊंगा, लेकिन अच्छी कहानी है, सुनते जाइएगा.
2: Lister, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10kg, $7.49. Leela Medium Atta 10kg, just $3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20kg, $24.99. Hira Butter Ghee 2kg, $10.99. And Falcon Paneer Box, $8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for $1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5kg for $3.99. Mido Yogurt 10kg, $8.99. Karela or Long Dudi, $2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Lister, LE1 2JU, and 2A Rollout Hill, Lister, LE5 4UN. Location.
3: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: Start to

0: Gem In Foods sponsors Gold Afternoons. From Dal Bhat, Pav Bhaji and Biryani to Namkeen, Khakra, Chikki, Potato Chips, Mango Pulp, Pani Puri and Sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
1: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500 पाउंड, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
2: एक्सपीरियंस An unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara.
3: Nazar se nazar.
2: Performing live in Birmingham on Friday, 31st July at Albury, Birmingham. Book your tickets now on eventbrite.com. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets just £25, including a three-course meal. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: Location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.

0: is Leica Gold across Greater London.
1: अब आते हैं रोशन, सलील चौधरी के बाद रोशन. इंदिवर जी की लिरिक्स है और अनोखी रात का गाना. वी आर डूइंग म्यूजिक डायरेक्टर्स हु हैव कंपोज्ड फॉर मुकेश जी दिस आवर.

Mukesh songs that have been composed by different music directors. हमने सब music directors को पेश किया दूसरे third hour में. ये है S.D. Burman. Next होंगे उनके बेटे R.D. Burman. और उसके बाद dancing. Yes. सुनते जाइएगा. मुकेश जी की tribute है आज.

0: Leica Radio Network, broadcasting across the Midlands.
1: एसडी बर्मन वॉज द ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ मुकेश जी वॉइस. इन्होंने बहुत सारे गाने नहीं गवाए थे, लेकिन बंदिनी फिल्म, मेरी सूरत तेरी आंखें, सब गीत हिट थे. ये है आर डी बर्मन, फिल्म है राजा रानी.

0: अरे हाँ, ये कौन सा महीना है?
1: जनवरी। ऋतु सुहानी झूमती है।
0: ये पुलिस क्यों घूमती है?
1: अरे बाबा, तुम्हें नहीं किसी चोर को ढूंढती है। दर्दे फुरकत सहे रहे थे, हाँ तो तुम क्या कह रहे थे?
2: बाप बेटे एस डी बर्मन, आर डी बर्मन दोनों ने मुकेश जी को गवाया। ब्यूटिफुल, डीपली सोलफुल बैरिटोन, परफेक्ट फॉर मेलेंकोलिक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रोमांटिक मेलोडीज।
0: मैं कुछ कह रहा था।
2: अब एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर को पेश कर रहा हूं जिनका नाम है दान सिंह। दान सिंह ने माई लव फिल्म में मुकेश जी को गवाया था। ब्यूटिफुल सॉन्ग। सो ऑल म्यूजिक डायरेक्टर्स हु हैव कंपोज्ड फॉर मुकेश जी इन दिस आवर एंड इन द थर्ड आवर जो बाकी रह गए हैं। नेक्स्ट आवर इट विल बी एक्टर्स।
3: ओ तेरे प्यार का गम,
2: आनंद बख्शी लिरिक्स।

जी हाँ, मुकेश जी को याद कर रहे हैं हम आज ऑन हिज 103rd बर्थ एनिवर्सरी. अब सिग्नेचर पैथोस एंड हैवी ट्रेजिक टोन वो सेकंड टू नन. वो मध्यम सप्तक में ज्यादा प्रेफर करते थे गाना. एंड उनकी करियर कैसे शुरू हुई और एक सैड बहुत ही कठिन दौर से वो गुजरे थे, चलो उनके बारे में बात करते हैं. ही स्टार्टेड हिज करियर एज एन एक्टर एंड अ सिंगर फॉर फिल्म निर्दोष 1941 में. हीरोइन थी नलिनी जयवंत. इनको इंट्रोड्यूस किया था मोतीलाल, हु वॉज रिलेटेड टू हिम, बट वी वॉन्ट गो टू मच इन टू दैट. लेट्स स्टीम अहेड इन टू फाइंडिंग आउट वॉट प्रॉब्लम्स ही गॉट इन टू. वो फिल्म जो थी निर्दोष 1941 की, उसके बाद द सेकेंड फिल्म वॉज आदाबर्स 1943 की. उसके बाद 1951 में इन्होंने फिल्म मल्हार प्रोड्यूस की थी. जितने पैसे कमाए थे इन्होंने प्रीवियस फिल्म्स में से, वो सब इन्होंने डाल दिए फिल्म मल्हार में. और म्यूजिक डायरेक्टर चुना रोशन. रोशन जी को चुनकर 1951 में ही गॉट द हीरो अर्जुन एंड द हीरोइन शम्मी एंड अंडर द बैनर ऑफ डार्लिंग फिल्म्स. वो 1951 की बात कही. देन ही वॉज अ गेस्ट अपियरेंस, मतलब गेस्ट रोल इन फिल्म आह, राज कपूर की 1953 की फिल्म आह. फिर ही वॉन्टेड टू बी अ हीरो. वॉट हैपन वॉज ही वॉज चेजिंग अ ड्रीम. इनके फेवरेट कुंदन लाल साइगल थे. उन्होंने नोटिस किया कुंदन लाल साइगल वॉज एक्टिंग एंड सिंगिंग. So he was a hero in his films and he was also singing his songs and he was a superstar. So Mukesh ji ne socha ke I can do the same because he was good looking and he could sing. So inhone wohi dream ko follow kiya. So as after 1953 he became a hero in the film Mashuka opposite Suraiya. These films did not go well. And then opposite Usha Kiran and Mridula Rani, usi film Mashuka mein. Uske baad aayi film Anurag 1956 ki. Anurag film mein he wore three hats. Three hats yani ke acting, producing and composing. He was also the composer in the film. So financially Mukesh ji reached rock bottom after Anurag. Hua kya tha ke film distributors jo the, with film Anurag distributors had lost faith in him because of his previous flops. So he had to take massive high interest loans from Bombay financiers. Bombay ke financiers are literal loan sharks. Duniya mein sab jagah loan sharks hote hain. Inhone high interest pe paisa liya kyunki distributors had lost faith in him. Kuch financiers ne jo paisa diya tha wo mana kar rahe the paisa dene ko. Inhone loans liye. Ab gamble ye tha ke film Malhar, Mashuka, अनुराग के बाद ही ब्रॉट हिमसेल्फ रियल रॉक बॉटम. इनके पास बच्चों की स्कूल के फीस के पैसे भी नहीं थे. ही ट्राइड रिटर्निंग टू प्लेबैक सिंगिंग बट द इंडस्ट्री हैड मूव्ड टू मोहम्मद रफी साहब एंड तलत महमूद. आगे इतने प्रॉब्लम में आ गए थे लेकिन टू पीपल केम टू द रेस्क्यू. थ्री पीपल आई शुड से, राज कपूर, शंकर एंड जय किशन, दे ऑल केम टू हिज रेस्क्यू. लेकिन ही वॉज सो प्राउड. मुकेश जी
हैड सो मच प्राइड इन हिम ही वुड नॉट हाथ नहीं फैला रहे थे वो. उन्होंने कहा मुझे खैरात के पैसे तो नहीं चाहिए, काम करके कमा के सब पैसे लौटा दूंगा लोगों को. दैट ही ओड फाइनेंशियर्स वर आफ्टर हिज बैक. लेकिन राज कपूर जी ने एक युक्ति मारी. व्हाट ही डिड वाज, इन्होंने कहा कि मेरे पास जितने गाने अब रेडी है वो आपको गाने हैं और उसके लिए मैं आपको एडवांस दे रहा हूं. आई एम बुकिंग यू एज माई वॉइस. एंड सो गाने लिखे भी नहीं गए थे लेकिन राज कपूर जी ने ऐसा कहा और शंकर जयकिशन जी ने कहा कि हाँ मैं हम कंपोज कर रहे हैं वो गाने और आपको गाने हैं ये सब गाने. ऐसा करके उन्होंने उनको एडवांस पैसा दिया एंड मुकेश जी केम आउट ऑफ हिज डेट्स एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग. ही बिकेम द वॉइस ऑफ राज कपूर. गाने इनको मालूम था कि इनकी वॉइस वॉज काइंड ऑफ इन द मध्यम सप्तक, मतलब देखो दे वर नॉट एज हाई रेंज सॉन्ग्स एज बैजू बावरा में जो रफ़ी साहब ने गाया, वैसे तो गाने नहीं थे लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर्स को ऐसा ही कहा गया था कि आप ऐसा कंपोज करें विच सूट्स हिम एंड सूट्स मी. एंड दे डिड जस्ट दैट. दैट वे मुकेश जी केम आउट ऑफ हिज डेट्स. अ मैन हु इन द प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग ही ड्रीम्स ही बैंकरप्टेड हिमसेल्फ आफ्टर द गैम्बल ऑफ मल्हार, माशुका एंड अनुराग. बट इट्स अ हैप्पी एंडिंग. 1970s में देखो व्हेन कभी कभी फिल्म, खयाम साहब सब ने उनको गवाया एंड ही बिकेम काइंड ऑफ मोर पॉपुलर देन एवर बिफोर. एंड नौशाद जी जो रफ़ी साहब को ही गवाते थे मोस्टली फॉर दिलीप कुमार साहब, उन्होंने 18 साल के बाद उनको बुलाया गाने के लिए बिकॉज स्टोरी ऐसी थी फिल्म साथी की कि ही नीडेड दैट वॉइस दैट मुकेश जी हैड, अ ब्यूटिफुल डीपली सोलफुल बैरिटोन वॉइस दैट वॉज परफेक्ट फॉर मेलेंकोलिक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड

0: एक्टर्स जिनके लिए, और राजेश खन्ना जी भी हैं जिनके लिए मुकेश जी ने गाया। सुनते रहिएगा, मैं हूं बाली ब्रह्मभट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 128.8 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्ले बैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: जिंदगी।
1: Listen to Like a Gold 2 on Like a Radio mobile app, likearadio.com and Alexa. Play Like a Gold 2.
2: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
3: Like a Radio Network. Broadcasting across the UK.
4: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें Like Our Radio Sales on 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@likeourmedia.co.uk।
3: This is Like Our Radio across the Midlands.

0: जी हाँ, आपने 2 घंटे से ट्रिब्यूट सुना मुकेश जी का. इन द फर्स्ट आवर इट वॉज कंपोजर्स हु सैंग हु कंपोज्ड फॉर मुकेश जी, एंड इन द सेकेंड आवर इट इज एक्टर्स हु ही सैंग फॉर. ये था ऑफकोर्स शशि कपूर जी के ऊपर. एंड नेक्स्ट सॉन्ग इज हिम सिंगिंग फॉर हिमसेल्फ इन फिल्म अनुराग. अनुराग में म्यूजिक भी इन्होंने दिया, एक्टिंग भी किया एंड कंपोज भी किया और गाया भी. तो सुनिएगा ये गीत.
1: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at leicaradio.com, via Alexa or by using our Leica Radio mobile app.
0: Mukesh singing for Mukesh. Film Anurag. Composed by him.

और ये गीत पिक्चराइज्ड ऑन प्रदीप कुमार एंड इट इज मदन मोहन हु कंपोज्ड इट. सो अ ड्यूओ बाय मुकेश.

0: आपने जो दो गाने सुने, दीज आर सम ऑफ दोज फैबुलस सॉन्ग्स। कभी कभी ये आवाज सुनते ही आंख में आंसू आ जाते हैं। आपको ऐसा होता है क्या? मुझे बहुत होता है। एक दर्द भरी आवाज, मतलब के गाना सैड भी ना हो लेकिन जो पैथोस और जिस अंदाज से और जिस फीलिंग से वो आवाज दिल को पहुंचती है, तो अपने आप ही आंसू आ जाते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अ ब्यूटिफुल डीपली सोलफुल बैरिटोन्स वॉइस, बैरिटोन वॉइस परफेक्ट फॉर मेलंकोलिक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रोमांटिक मेलोडीज एंड हिज सिग्नेचर पैथोस एंड हैवी ट्रेजिक टोन वॉज सेकेंड टू नन। मुकेश जी, आपने पहला जो गाना सुना, ऑब्वियसली एवरीबडी नोज के राजेश खन्ना जी पे पिक्चराइज हुआ एंड द म्यूजिक वॉज बाय नन अदर देन सलील चौधरी जी इन फिल्म आनंद। और दूसरा गाना आपने जो सुना, ए प्यासे दिल बेजुबा, दैट वॉज फिल्म बेगुनाह एंड इट वॉज पिक्चराइज एक्चुअली इट वॉज पिक्चराइज ऑन कंपोजर जयकिशन, शंकर जयकिशन के जयकिशन जी पे ये पिक्चराइज हुआ था एंड आई थॉट इट बी वंडरफुल टू शेयर इट आउट विद यू। एंड अगर आप उसकी पिक्चराइजेशन भी देखेंगे आपको बड़ा मजा आएगा एंड वॉट अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ सिंगिंग देयर एंड क्या कॉम्पोजिशन थी। शंकर जयकिशन ने संगीत से सजाया और शैलेंद्र जी ने लिखा और दोनों की कॉम्बिनेशन वॉज अमेजिंग। दिस फिल्म बेगुनाह 1957 की। एनीवे आगे बढ़ते हैं, हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक इज नन अदर देन हेमा मालिनी जी। हेमा मालिनी जी के लिए हमने फिरोज खान को सेव करके रखा था बिकॉज फिल्म धर्मात्मा में दोनों ने जो एक्टिंग की थी, तो वो गाना आप सुनिएगा। आगे जाते हुए जो भी गाने कुछ बाकी रह गए वो हम आपको सुनाते जाएंगे, आपको आप मायूस नहीं होंगे। एंड थैंक यू फॉर आई थिंक आई हैव गॉट हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस टुडे। मैं इतना पीछे हूँ आज आपके मैसेजेस आंसर करने के लिए, पर कोशिश है, जारी है कि मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। एंड आई विल ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, थैंक यू वेरी मच। लाइका गोल्ड पे मैं हूँ बाली ब्रह्मट ऑन गोल्ड आफ्टरनून्स विच इज स्पॉन्सर्ड बाई जैमिन फूड्स, अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव, डी ए बी, एलेक्सा, गूगल होम एंड लाइका गोल्ड डॉट कॉम, ऑल्सो अवेलेबल ऑन रेडियो प्लेयर ऐप एंड ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स। इट्स द 379th डे ऑफ लाइका रेडियो मिडलैंड्स एंड सैंडी शाह अभी नेक्स्ट आवर में 4 बजे आएंगे विद ड्राइव टाइम एंड राज पत्तन ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स ऑन द 379th डे ऑन विद हिज वंडरफुल शो। सो आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 128.8 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Ye hai Laika Radio. Laika
2: Radio. Gem in Gold Afternoons with Bali Brambat. Bali Brambat. Gem in Foods. Bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you. List
3: faster. Stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 7.49. Leela Medium Atta 10 kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Heera Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 3.99. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE1-2JU and 2A Rollout Cell, Leicester, LE5-4UN.
4: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500 पाउंड, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार सीपीडी सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
5: Lester Miller is back.
6: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
5: Shin DCS. Expect classic vibes, live energy, and a proper celebration at the Abbey Park.
6: Hosted by the team of Lyco Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
5: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
6: Arts Council England.

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208-8839-0880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
2: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन
3: इन रियल एस्टेट। Location is everything, and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danio. Prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: Hey, friends के साथ weekend party हो या खुद के साथ Netflix and chill, a desi तड़का is total risk, है ना?
5: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips, crunchy, tasty and total desi swad in 4 मजेदार flavors.
4: Crunch cannot wait, so visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
6: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography.

0: लिपट गए।
1: 1978 में इन्होंने जब ये फिल्म जब रिलीज हुई सत्यम शिवम सुंदरम, किसे पता था मुकेश जी का आखिरी गीत था होप यू एंजॉयड द ट्रिप। दिस इज द बेस्ट मैसेज ही एवर गेव टू द वर्ल्ड थ्रू राज कपूर। दिस इज द ओनली वे आई कुड एंड इट। एंड नेक्स्ट रफी साहब एंड मुकेश जी ने जो साथ में गाया था गीत वो

0: नितिन मुकेश जी ने कहा, पापा आप वहां ऊपर हैं, हम यहां नीचे हैं, लेकिन आपकी आवाज हमेशा जिंदा रहेगी सबके दिलों में। हाउ राइटली पुट।
1: Cool music for a super hot summertime on the Leica Radio Network.
2: Saal Mubarak Sahib Ji.
3: Saal Mubarak Sahib Ji.
0: Bye bye for now. It's Sandy Shah and Raj Baddan on Leica Radio Midlands and Sandy Shah on Drive Time here.

0: Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Time to get naughty and nostalgic as Radio Wally takes you through the noughties.
1: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara.
2: Nazar se nazar.
1: Performing live in Birmingham on Friday, 31st July at Albury, Birmingham. Book your tickets now on eventbrite.com. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets just £25, including a three-course meal. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
4: Birmingham Hodge Hill, this is not a drill. Pepe's is now open at 606 to 608 Bromford Lane. Get your chicken rice, chicken XL, flame grilled wings, strips, burgers, burritos and banging salads, all packed with pepperlicious flavour. Birmingham, come and get it.
5: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 Belgrave Road, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में. कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 Belgrave Road, LE4 5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ. कॉल कीजिए 0116-332-5100. एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी.
0: ये है लाइका गोल्ड.

0: Get your product advertised across the largest Asian radio network. We are Leica Radio. Email sales at leicamedia.co.uk.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
4: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit heartyhanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit heartyhanks.com today.
0: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
5: Leica Radio.
0: Bollywood romantic hits throughout the night. This is the love sound.

0: है लाइका रेडियो लोकेशन लोकेशन लोकेशन
1: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
0: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
1: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
0: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
1: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
0: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
1: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 Greens by Danube Prime Location
0: High Appreciation
1: in Dubai
2: Download the Leica Radio mobile app Listen live and listen back to your favorite shows This is Leica Radio part of the Leica Radio network easing you through the night with the Midlands biggest Asian hits on Leica Radio

0: ये है
1: लाइका रेडियो
2: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
3: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
2: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
3: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
2: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
3: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
2: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
3: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस On 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London. Soon.
5: The greatest Asian love songs across the Leica Radio Network.